0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தருவது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चनवीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चनवीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channavira Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla

0: बाय श्री मलयमल्लई शुगर देसाई कल्लोड।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। इसमें दो बंदिशें जपताल और द्रुत तिनताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्री।
0: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री begins his Shehnai recital with Rag Rageshri, in which he is presenting two compositions set to Jhaptal and Drut Teen Taal.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लपा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.